0: अंतर पूजा पढ़े कते बासन जम तुलका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: बाण सखाने करे निवास श्री वगाय तन गल ताग तिन कर ब्रह्मण पूरे नाद उना पे आवे हुई साध कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आखार शर्म धर्म का डेरा दूर नान कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिका तेड़ धोती तो का खाई अब छुरी रक्त का साई नील बसर पैर वै प्रवान मले स्थान ले पुजै प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देख के चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कुड़े यार मत पिटै वे मत पिटै ए अना साडा फिटै तन फिटै फिट करेन मन जूठै चुली परेन

जेहा जाने ते हो वर्ता वेको को निर्जास, वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी हो वे पास, साहिब से ते हुकम ना चले कही बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ो हो वे नानक सिफत विगास।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जब लो नहीं पाग लिलारे उदा तब लो प्रमते फिरते बहुत आया काल कोर समुद्र में गूडत थे कबहू मिट है नहीं रे पछुताया तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनाया जपयाओ जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयाओ सतगुर आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम हर सुबा चिंता लाहे हमारी।

एक अरदास पाठ कीरत की गोर रामदास राखहो शरणाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में अपना तान मान हुए निहार जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवा सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर साहा दैसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सजन सच्चा पातशाह सिर साहा दैसाह जिस पास

रंग अनेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्प कला।

आसरों के आसरा तन तन श्री गुरु रामदास जी ओ महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ सा।

0: जिने नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। जिने नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केते छुटे ना।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हरे पुरख निरंजन हरे अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वाडे अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोय। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पैले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै। रहाओ जाप।

पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होय चित्त की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन कौ आज संगरिए पूरन होय हमारी आशा तोरे भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिय हो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाई ब्रह्मा बप तरा काल पाई शिव जू अवतरा काल पाई कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझिया हो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशान काट काट के पट पट की जान जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पेव न पावत बेदा ताक कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा
सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आदि जुगादि स्वरूप सोया।

भव। अबरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे, हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सागल द्वार कौ शाड़े कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज आस,

आप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र

आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज।

आव कटै तन शीजै, काल अहेरी फिरै बद्धिक जियो, कह हौ कवन बेद की जै। दिन ते पहर, पहर ते करियां, आव कटै तन शीजै, काल अहेरी फिरै बद्धिक जियो,

मात पिता पाई सुत बनता कहो को है काका रहाओ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु न बुझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु न सूझे कहत कबीर सुन हो रे प्राणी।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, होआ सिफत खसमदी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दसाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना देश, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दसाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना देश। सत

ताकाओ अचरज काहो ज्यो जल जल मह पास नानक सा त्यो ढोर मिलियो जुलाहो जो जान पाओ भगत कछ जाना ताकाओ अचरज काहो ज्यो जल जल मह पास नानक सा त्यो ढोर मिलियो जुलाहो हर के लोगा मैं ताओ मत का पूरा जो तन कासी तज है कबीरा रमैया कहा निहुरा रहा कहत कबीर सुनहु रे लोई परम ना भूलहु कोई क्या कासी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई कहत कबीर सुनहु रे लोई परम ना भूलहु कोई क्या

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो। सर्ब सुख हर

खाक जमिला तमस्त कलाइए, कूड़ा लाल छड़िए, होए एक मन अलख त्याइए, फलते वे हो पाइए, जे वे ही कर कमाइए, जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ते ना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।

0: जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उच्चर जिन कम सबश्रेष्ठ सवारे ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो कब कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो।
1: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज समायो मां ताता गुण रवे जेन चकर वे कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चर सदा गुर संग रहंतो दूर बापुर अंगर गुरु नानक जस गायो कब काल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोम कहत माँ जशोर जसे दही पाद खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महामग भई किंकनी शब्द चनदकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेर सके ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
2: अकम अनंत अनाद आदि जिसको न जाने शिव ब्रंच तर त्यान नित जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गणन समर्थ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसे सिरे सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्ते बसे गुरु रामदास चित्ते बसे।
3: जक मन ध्यान धारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको शिव मुन गह न तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गोर रामदास को।
4: अमे दृष्ट शुभ करे हरे अग

0: रखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहां दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सवना दा वेसाहो सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहां दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सवना दा वेसाहो सत

कह रविदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुड़े थे मादा।

पण आस लाग जीवा चिर पायो दर्शन देखे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पति यार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन कौ पूरन दीजै।